खूबसूरत गीत मानक साहब की आवाज साझा किया तहे दिलो धन्नवाद ते लो जी चलते अगले गीत वाल अगला गीत हरमेल सिंह ढिल्लो साहब कविश्री साझी की बाबू रजब अली साहब की थोड़ी जी चलावांगे कबूल करियो ते गीत बहुत ने इस करके समा सारिआं नूं देना ते थोड़ा थोड़ा कबूल करियो जी बहुत बहुत धन्नवाद तुसीं इन्ना प्यार सत्कार दिंदे हो ते नाना राजकुमार जी पिंड ढाई पई तहसील जातो जिला फरीदकोट तो प्यार भरी सत श्री अकाल कह रहे ने।

0: नमस्ते, मैं हूं कैलाश खेर और आप सुन रहे हैं चंद परदेशी रेडियो। सुनते रहिए चंद परदेशी रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो रेडियो चंद परदेशी, शिकागो दा 24 घंटे 7 दिन चलन वाला पहला पंजाबी रेडियो। तुसी सुन रहे हो रेडियो चंद परदेशी, चंद परदेशी।
2: You are listening Radio Chand Pardesi, Chicago's 24/7 First Punjabi Radio. I'm listening Radio Chand Pardesi, Chicago's
3: 24/7 Chand Pardesi di saanjh rahe pakki.
4: Is layi Radio Chand Pardesi de programma nu tuhade tak pahunchaun layi sanu lod hai tuhadi support te tuhade saath di. चंद परदेसी रेडियो नु सपोर्ट करन लई तुसी साडी वेबसाइट chandparadesi.com ते विजिट करके ते राइट साइड ते बने सब्सक्रिप्शन ऑप्शन च जाके 10 to $200 तक क्लिक कर सकते हो।
3: तुहाडे वल्लों कीती इस मदद लई रेडियो चंद परदेसी धन्नवादी होवेगा।
4: सपोर्ट चंद

0: रेडियो चन परदेसी दे सत्कारत स्रोतिया लई एक सूचना।
1: रेडियो चन परदेसी दे प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा विच वख-वख मेहमान शख्सियतां वल्लों वख-वख विषयां ते पेश कीते जांदे विचारां नाल रेडियो चन परदेसी दा सहमत होना जां ना होना जरूरी नहीं है।
2: प्रोग्राम से कॉल करने लिए डायल करो यूएसए तो 815-676-0004 दे। वैंकूवर कनाडा तो 778-724-0752 दे। कैलिफोर्निया तो 569-512-1128 दे। ऑस्ट्रेलिया तो 6039-013-4419 ते। हांगकांग तो 8170-0136 ते। यूनाइटेड किंगडम तो 0232-2145 ते। जा स्काइप आईडी चन परदेसी रेडियो ते कॉल कर सकते हो।

जिन्होंने तुसी सुनिया गीत दी फरमाइश की जगजीत सिंह दी आवाज विच इक गजल। शुक्रिया जी, धन्यवाद। गीत नूं पसंद करन दे लई मेहरबानी। तमाम स्रोते जेड़े इस समय प्रोग्राम दे नाल ने, मेरी आवाज नूं सुन रहे ने, संगीत दा आनंद माण रहे ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, मेहरबानी। सो फरमाइश गीतां दे वल रुख करदे आं। बिना देरी कीतियां साडे नाल ने जी बलबीर सिंह सैणी जी चंडीगढ़ तों जी। रामजीत कंगड़ा जी, शुक्रिया पसंद करन दे लई। ज्ञान गुराटी जी, शुक्रिया। बलबीर सैणी जी, धन्यवाद जी। बलबीर सिंह सैणी जी चंडीगढ़ तों सुनना चाहुंदे ने अगला एह गीत।

0: कुमारी के अंदर जिस रूह का साया था पीर मुर्शिद ने अपने अंदर ले लिया और निकलते वक्त किसी पर भी हमला हो सकता है। बाहर चलिए महाराज, बाहर
1: महाराज,
0: जल्दी चलिए।